0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: लुइपी मनु त धन्यपे घ परमेश्वर इम त लुदङ्गादि यो पिन्यनमिपि यसु ख्रिस्ट धाथ्यम मस्यह धका मसिकुपि सकसित अनन्त जीवन बि अले झिस यसु या त झी प्रभु धका स्वीकार्याना धार्मिकता के न्यासी बनेको प्रतिबद्धता पुन केवले भविष्य या सहस्राब्दी राज्य या इले नजिद युगको शिर्पा काय गुजुई यो पिनियन मेपे थौमी आगो बच निणा दिगुने छिसक सित न परमेश्वर सुब्याबीमा जय मसी यनमिपि छिमस नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपुकेना दिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना जिगु हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगो मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकु सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।
1: टाइम चेक यति बेला बिहानको 8 बज्यो।

पुसदाई संघर्ष नै जिन्दगी हो भनी बल्ल बुझ्दैछु। देख्न सक्छौ वारिडा पारिनी संघर्षशील संघर्षशील छन् का चिनारिनी।